0: आदमी हर घड़ी हाँ घड़ी तेरी सत्र मिनट में दिवे राज्य गड़ौल में गणित में देने बाज रहे हिंदने में दुख प्रोग्राम गाल में वाह धक्का दम में गंदा माउदो की और में वाह धक्का और इतना नफसा नहीं बलता होगा वाह किंगे तो नफसा नहीं बलता हमल कर मंदा फरायत का आयली लोए बा अड़ा दो एकशी के बा मिम्बर का लिबे तो ये मी और में गेम में दुख माउदो की ख्याल फुलता हिस्सा कर मंटा कती बेफलों गुड़वा नंबर के तीने तीने हाथ रे सुमेंग आए एक तो ती बेफोर ना और में प्रोग्राम का पीएस में आ मेदर को बेफोर जत इंगे तो बाजर हेंद्र ने नंगवा देन ती बेफलों पी और में ना ख्याल फाल कर बा नंगे तो और में मिहार बेफला का गुड़ फॉर शाजी आदत
1: अस्सलाम वालेकुम
0: ಹಿಮಾಲ್ವಾ ಕಮಿ ಕಮಗ ಬೈ ಬೇಫಳ ಫಾಹುರವಾ ಕಮೆ ಕೀನೆತ್ತೋ ನಫ್ಸಾನಿ ಬಲ್ತ ಹಮಲ್ ಕುರಮ ದ ಫರಾಯತ್ತಕ

0: जे चेनुं एचें अलगन में गम अतु में नांडाने कम अलगन में मे रफा कोरानी एमी मकाऊ मी कंतत्ता को का मी अलगन में एम्मे फरता में एम्मे बड़ा विसंजे कम के मिनिवं कं दिफा को मिनिवं कं दे में हेट्टो मट्टा का कोरंजे हो रहा मसे के तके रंगला आधा करो दें अलगन में का कामे अत के एम्मे मुहिमरोकन की दी दीनों का में मी होनरी कंत तकंग अलगन में के सत्य का परसेंट मौसम गाँव का वीती वे अलगन में बजे वारा बड़ा यह तिराम को एका नवाहट्टा मिसाल का मिस्किते के कोरे माते का होटल एंगुन्ने ऐरो का मिस्कितम बंगे गोवा नमाद कोने मेरो होटल का सायबो ना नोवता डिंगु कुले दंग ऐता मड़को गेंते बोंगा बादल का अलगोन में होरी है एम्मे वेस जे है बंगे का डर समाल कंदी ये बंगे अलगोन में ना की तारो ही दे बाए कमगा वा कोम में गोते वी ना मवेस अलगोन मेंगे मैवे के वा इस्लाम देन अलगोन में ना हमतक का उसूल तक का एबा होरी वरा बोड़ा दक का वाफा ऐह में एकं तत्त्व का तरेगा अलगोन में इस अरहत दुगा बिना वामी गाँवी दारिये दीनी गोतों फुरी हम आदि देने कंतत तक वाजिब तक फिर हमें यह तेरा हम कुरम कुरा होर में तेरे को गीता रंगलो दारी मीना वामे
1: देखो मैं कसमी हम मैं आगर में गवार पड़ काम पड़ो मक बने मिहार तफात कुल तक तफात फिकुर तक तफात ख्याल तक दे मिहुरी हाँ कम के तेरे में सालगन में ना मैं अमिल मसलहत अब गाँव में मसलहत इस नुकुर विगे मुजतमो का मसलहत इस नुकुर विगे दावा का आगर में ना मिहा कंपोड़ो मैं कि देखे वाह के मिफत कोमे मानसई के वस्ते में नाही दावे गवा फुगस वे को तफा कर भी मिहा सा का इतिहास वसवन आरो फेश के मिसा मी स्कूल तक कोमे इम्तिहान है दारो के को दिन बर हालो के इम्तिहान हदे ने सेम इम्तिहान तक के को दिन रंगलो मा हिसाब का गेंदे मट्ट का मोहे मुकमे दे एक मी आर रंगलो जी दे बिना कुर नुकुर विच न मलको में दिमाग एक अंत तक एक वाहक धक्का एरो का माजे के अलगो में के तारीख को वर हम खालो सफा तक बहुत मिसाल दे में फुरतम फटम विताले ओन दिवे हैं शहीद वे केंद्रीय हादसा के वाहक एक मैं एक सोला वर फनर वर का हर को मैं रंग आलगों में किराज पहुंच गई संग आलों वेती कमेटी वाहक दें हाँ एक काम का बस पहुंच गई संग के तारे हो करने थे मैं हूँ दिवे राज आलों वेती कोरी खामा कशे दिवे हैं के बाय को दिखने हैं वे मैं किने तो मैं फा आलगों में के गांव
2: Mengin mihar amil dan apa sah mihar hamajia dah bisna lima, alun mengin wasa yang emas setang ibu hutte, ingat itu, ekang kang hal dokram masih ke kurang biye alun ini ber, misal emas setaki mih furtama kamak abad alun dah mihar mengin ini sakuha kurang, ingat itu, ini sah alun mentera fahung aruh ke, ingat itu, mih bisna orang balwa, alun mengin non to minuman dos annati julai sabis annati huriha mengin hidun fahagin baikulai kung hidun li alun Algun men nunto, algun men huriha men gotiga mi pulabu ke dili. Algun men katun nunto, misa ku bunagan nunto. Algun men nunto ham amil yang istaga ageng tisar amil yang ganagan lagen gombi tima support kurang mi football dan algun men dani. Ekulai ke eruh ke engitega. Algun men gunu gan nunto, ya tu nunto. Then mi eruha esaugurikama ekurikama eba bandakang algun men teren detige mida saub alguna para safe ingeto misalnya. Enmi sahaja nak baca na. Alangkah mana edda orang ke November ini naade, ane edda orang ke November ini ngeba ade. Mimi sahalum, awam ni misal, nanggawa mahinggawa. Komma edda orang ke awes November ini annam mana nunto, November ini fahakura mana nunto, awam ni ngeba war dibeh nunto sahijul ngeba ngeyi. Kebo to ehen awam ni nuwani, ehen nuwafir hisabung. Misalaka Muhammad Zahiru kitam berangkalo kame kurias, nahida missa kamlu dehi, eh nahida miss kerajaan ke erangkalo kame nu. Hagiaga to Muhammad Zahiru kurikan taku mulega mu fada eba weye, ekamukun nahida miss kabulde nukurwe, de nahida miss vidalwani, rugiya missari hukus, rugiya missa ala Zahiru kurikan mu kongkame kebani, balah fada eba weye, manfa eba weye, e fada eba libigane. Ekamakus berumur ini fada nek kami kama dakkan.
1: Ini masakua ini masakua korban.
2: Ekara barab, deh kami ikutan. Eh misalnya, misalnya kah sihir dara. Awalnya kah sihir dara kuri nulibe kita kanta biad eba libe to. Ekamakus ekang hitung awalnya ready to awalnya itbi mitbi ekam balagan nanto emming.
1: Balagan.
2: Eh mah kau. Eh mah, eh kan, adanya mana bahagia